वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस्तकबाल करती है आपकी दोस्त सविता। जी हाँ, नॉन स्टॉप गपशप पर 107 एफएम पर आ चुकी है आपकी दोस्त, और लम्हा लम्हा हम गुजारेंगे आपके साथ पूरे एक घंटे का वक्त।

Chicken. दोस्तों कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप की तो शुरुआत हो चुकी है और आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसी हम आशा करते हैं बिल्कुल। और आज के दिन के सेगमेंट को भी तो आगे बढ़ाना है, तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं इतिहास की ओर। जी हाँ दोस्तों, इतिहास कभी बेरहम होता है तो कभी रहमो करम की बारिशें होती हैं, कभी नफरत से इंसानियत दफन हो जाती है तो कभी

बरसता है मोहब्बत का जी। कभी खून की स्याही से सन्नाटा ही सन्नाटा पसर जाता है, तो कभी जी हाँ कभी लिखी जाती हैं तारीखें नई सभ्यता की, नई शुरुआत की। तो ऐसे ही इतिहास को आपके साथ हम साझा करने आ गए हैं कार्यक्रम आज के दिन के सेगमेंट की ओर। 1962 में युगांडा को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मिल्टन ओबेटे पहले प्रधानमंत्री बने। देश में आज भी 9 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इटली में बांजोट बांध आपदा 1963 में घटी। एक विशाल लहर के नीचे बसे शहरों को तबाह कर दिया। 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। द फैंटम ऑफ द ओपेरा का प्रीमियर 1986 में हुआ। यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले संगीत नाटकों में से एक बन गया था। आविष्कारक फेलिक्स बेंकेल का निधन हुआ 9 अक्टूबर 1988 को जर्मनी में। वे रोटरी इंजन के आविष्कारक थे। उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए इंजन का उपयोग स्पोर्ट्स और विशेष कारों में किया गया था। 9 अक्टूबर 1992 को न्यूयॉर्क के पिक स्किल में खड़ी एक शेवरले मालिबू कार पर एक उल्का पिंड गिर पड़ा। मालिक मिशेल नेप को अपनी कार की डिक्की में एक छेद मिला। यह घटना अब तक की दर्ज की गई सबसे प्रसिद्ध उल्का पिंड टक्करों में से एक बन गई। तो दोस्तों ये थी कुछ साहित्यिक घटनाएं जो हमने की आपके साथ साझा।

जी हाँ दोस्तों, रातों को जागना, रात भर तारे गिनना, चारपाई पर करवटें बदलना, कुछ ऐसे ही जज्बातों का मचलना और गुलाबी खतों में उनको लिख देना, यही तो होता था पहले। लेकिन फिलहाल हमारी स्क्रीन पर हम कुछ शब्दों को टाइप करके इमोजी के ज़रिए भेज देते हैं एक दूसरे के जज्बातों को समझने के लिए। जी हाँ, बात मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जी हाँ, आज है वर्ल्ड पोस्टल डे, यानी डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। दोस्तों, हम सबके घर पर भी पोस्टमैन अंकल ने चिट्ठियाँ दी होंगी। हम बर्थडे कार्ड, राखियों से लेकर बहुत सी ज़रूरी कागजात सबका इंतज़ार करते हैं। पोस्टमैन आता है हमारे घर और हमारे हाथों में ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी कागजात या किसी के भावनाएं हम तक रख जाता है। दोस्तों, आज भी इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, एसएमएस और कुरियर के ज़माने हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का चलन कम तो हुआ है, लेकिन है आज भी। एक वक्त था जब बड़ी बेसब्री से लोग पोस्टमैन अंकल का इंतज़ार करते थे। उनके इंतज़ार में लोगों की नज़रें अपने दरवाजे पर और कान उनकी आवाज़ों पर टिकी रहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कब और कैसे हुई और उसके माध्यम से हम तक ये चीज़ें कैसे पहुंची? तो आइए इस खास मौके पर हम आपको बताते हैं। जी हाँ, आज है विश्व डाक दिवस और इस विश्व डाक दिवस पर हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं थोड़ी सी जानकारी। क्या आप जानकारी साझा करेंगे? जी हाँ, ज़रूर आपके साथ भी हम साझा करवाएंगे। तो आज दोस्तों, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी बिल्कुल नहीं चलने वाली। आपकी दोस्त सविता अभी से ये राज खोल दे रही है कि आज का विषय क्या है। आप समझ गए होंगे कि आज है डाक दिवस, तो आज हम चिट्ठियों की बातें करेंगे, पत्रों की बातें करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, पुराने ज़माने में पत्रों का, खतों का लिखने का चलन हुआ करता था। फिलहाल तो कुछ थोड़ा थोड़ा कम हो गया है और कई जगह तो पोस्ट ऑफिस बंद भी हो चुके हैं। कहीं कहीं पर जो डाकघर हैं वो काफ़ी गुमनामी के अंधेरे में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी तरह ख़त्म हो गए, क्योंकि उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जो महत्वता है, वो समाप्त हो ही नहीं सकती। और हमारी जो चिट्ठियाँ हैं, क्या वो कमतर हैं आज के मैसेज से? क्या मैसेज बेहतर है आज की जो कल की चिट्ठियाँ थी? तो आपको बस इतनी सी बात बतानी है कि जो चिट्ठियों का चलन था, जो पत्रों का चलन था, वो आपको कैसा लगता था और आपके साथ ऐसी कौन सी याद जुड़ी है चिट्ठियों से, वो क्या आप हमारे साथ साझा करेंगे? तो बस आ जाइए फ़ोन लाइंस पर, मैं आपकी दोस्त सविता इंतज़ार कर रही हूँ आपका 2213134 पर।

दोस्तों, भारत में यहाँ चिट्ठियों को लाने और पहुँचाने का काम करने वाले डिपार्टमेंट को डाक विभाग कहा जाता है। इसे भारतीय डाक सेवा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय डाक सेवा ने 1 अक्टूबर 2004 को ही अपने सफ़र के 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपने देश में 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार डाक व्यवस्था स्थापित की थी। फिर 1774 में बारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया था। इसके साथ ही चिट्ठियों को पोस्ट करते समय उस पर लगाए जाने वाले स्टैम्प्स की शुरुआत अपने देश में 1852 में शुरू हुई। इसके बाद हर शहर और गांव में पोस्ट ऑफिस बनाए गए। बाद में इन पोस्ट ऑफिसों में चिट्ठियों को संभालने के साथ साथ लोगों के पैसों को भी जमा करने का काम किया जाने लगा। इस तरह से एक लंबी जर्नी रही पोस्ट ऑफिस की। तो विश्व पोस्ट डाक दिवस पर आज हम बात करेंगे डाक की, चिट्ठियों की, पत्रों की। तो आपके पास क्या किसी के हसीन चित्र चिट्ठियाँ रखी हैं, और क्या आपके मन में किसी को पत्र लिखने की चाह या इच्छा है, या फिर आप उन पत्रों को जो आपके पास सहेज कर रखे गए हैं उन्हें आप क्या समझते हैं, आपके लिए वो कितने अनमोल हैं। ऐसी ही कुछ बातों के साथ मैं आपकी दोस्त सविता जुड़ चुकी हूँ, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको एक गीत सुनवाऊंगी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कन्यादान फिल्म से।

दोस्तों, एक वो वक्त था जब पैगाम देने लेने का जरिया सिर्फ खत हुआ करते थे। जज्बातों को कागज़ पर अल्फाजों में ढाल दिया जाता था और फिर इंतज़ार किया जाता था चिट्ठी पहुंचने का और वापस पैगाम आने का, और उसी बीच चलता था ख्वाबों का सिलसिला। भारतीय डाक का इतिहास 700 साल से भी पुराना है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दौर से शुरू होकर आधुनिक डिजिटल सेवाओं तक फैला है। यह मध्यकालीन शाही संदेश वाहकों से लेकर स्पीड पोस्ट और ई पेमेंट जैसे सेवाओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क बन गया है। आज भले ही स्मार्टफोन और इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए बातचीत करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन 700 पहले भारत का डाक नेटवर्क तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों और ना थकने वाले पैदल दौड़ने वाले इंसानों के दम पर चलता था। इंसान के पन्ने पलटाए गए तो आप पाएंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी के दौर से शुरू होकर 7 सदियों से भी ज़्यादा पुरानी भारत डाक सेवा की यात्रा एक अद्भुत और दिलचस्प दौर से गुजरती है। ये वो समय था जब घोड़ों के ज़रिए संदेश पहुंचाए जाते थे या पैदल दौड़ने वालों के ज़रिए संदेश पहुंचाए जाते थे, और इससे पहले का युग यदि हम देखें तो कबूतर भी हमारे संदेश वाहक हुआ करते थे। कितनी ही कहानियों में, पौराणिक गाथाओं में हमने पढ़ा है कि कबूतर संदेश लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे।

क्या खूब मंजर होता था जब लंबे इंतज़ार के बाद किसी अपने का खत हाथों में होता था। धड़कते दिल से धड़कते दिल की दास्तां सुनी जाती थी। दोस्तों, 2000 मील तक फैले एक खास घोड़ा डाक सिस्टम को संस्थागत रूप दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान पब्लिक पोस्ट ऑफिस को औपचारिक रूप दिया गया। इसकी शुरुआत 1766 में रॉबर्ट क्लाइव और 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की, जिसके बाद कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में मशहूर जनरल पोस्ट ऑफिस स्थापित किए गए। 19वीं सदी के मध्य में 1854 के पोस्ट ऑफिस एक्ट के साथ व्यवस्थित गवर्नेंस की शुरुआत हुई। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारतीय डाक सेवा का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1854 में आधुनिक भारतीय डाक सेवा की शुरुआत की थी। हालांकि आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव 1889 से 1880 के बीच आया, जब सस्ते पोस्ट कार्ड के साथ साथ रेलवे, मेल सर्विस और मनी ऑर्डर सिस्टम शुरू किए गए। आज़ादी के बाद इंडिया पोस्ट ने बदलती आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया और 1886 में तेज़ डिलीवरी की मांग को पूरा करने के लिए स्पीड पोस्ट की शुरुआत करना भी एक अहम पड़ाव साबित हुआ। 21वीं सदी में 2003 में मेघदूत सॉफ्टवेयर और 2006 में ई पेमेंट सेवाओं के साथ साथ प्रोजेक्ट एरो और आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों के जरिए टेक्नोलॉजी को अपनाने की तेज़ रफ्तार शुरू हुई। आज इंडिया पोस्ट सदियों पुरानी विरासत को आधुनिक डिजिटल गवर्नेंस से जोड़ने वाले एक गतिशील पुल के रूप में खड़ा है। पोस्ट ऑफिस ने एक लंबी यात्रा की है, जिसके कारण ही हम एक दूसरे से जुड़े रहे।

आपकी दोस्त एक बार फिर से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में 107 एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सविता के साथ, और आज बात हो रही है विश्व डाक दिवस की, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं चिट्ठी की, पत्रों की, संदेशों की। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हाईटेक की दुनिया में खतों पत्रों के सिलसिले दम तोड़ते चले गए। लंबे इंतज़ार ने चंद लम्हों में संदेश देने और लेने की दूरी तय कर ली। मैसेज जैसे शब्द ने क्रांति कर दी। बात तो दिल की थी, बस कुछ बदल सी गई। वो गुलाबी कागजों पर लिखे गुलाबी शब्दों की दुनिया चंद इमोजी में सिमट कर रह गई। दोस्तों आज भी यदि कहीं किसी बक्से में कोई पुराना मुड़ा हुआ कागज़ और उस पर लिखे हुए कुछ एहसास हमारे दिल तक चुभ जाते हैं, है ना? कहीं हम कोई पर्स में कुछ खोज रहे होते हैं, पर्स के अंदर कहीं कोई कोने में छुपा हुआ पत्र झांकने लगता है, कहता है मुझे उठाकर पढ़ लो। और जब हम उसमें पढ़ते हैं वो जज्बात, तो कितने जज्बाती हो जाते हैं। कई बार किताबों के बीच में गुलाबी खत मिल जाते हैं। कई बार पिता के द्वारा लिखा गया पुत्र या पुत्री को पत्र मिल जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं। कई बार हमारे भाई या बहन ने हमें समझाने के लिए कोई खत लिखा था, वो खत हमारे हाथों में आ जाता है तो लगता है जैसे वो साया पता नहीं कितनी दूर हो गया, लेकिन आज भी वो चंद जज्बातों में लिपटा हुआ, चंद शब्दों में लिपटा हुआ वो कागज़ का टुकड़ा हमारे कितने नज़दीक आ जाता है, कितना अनमोल हो जाता है, ये तो हम उस वक्त ही जान पाते हैं जिस वक्त उस एहसास से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिमालय प्रदेश के हिक्किम में है, जो समुद्र तट से 15,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट का तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी है। कहाँ पर है ये आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये है कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर, और शानदार एक हाउस बोट से चलता है ये पोस्ट ऑफिस। तो कुछ इस तरह की बातें आज हमने की हैं, और वक्त धीरे धीरे अपने

जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारे माध्यम हैं, बिजली की इसी गति से संदेश पहुंचाने के तरीके हैं। जज्बात तो हैं पर अंदाज कुछ अलग हैं। इन संदेशों की में चिट्ठी की सी मिठास है क्या, आत्मीयता का एहसास है क्या, ये तो प्रश्न मैं आप ही के ऊपर छोड़ते फिलहाल आपसे विदा लूँगी। इस रफ्तार पकड़ती दुनिया में स्लो मोशन से पहुँचती जो चिट्ठियाँ थीं, भले ही अब स्वीकार ना हो, भले ही वो थोड़ा

तरीका कम हो गया हो, लेकिन सुपर फास्ट स्पीड से पहुंचते संदेशों से कमतर तो ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनमें हमारी एक धड़कती दुनिया थी। चिट्ठियों के इंतजार से लेकर आज के डिजिटल दौर तक डाक सेवा ने दूर दराज के गांवों तक संदेश, पैसा और भरोसा पहुंचाया है। आज भी भारतीय डाक अपनी बचत योजनाओं, बैंकिंग और पार्सल सेवाओं के जरिए हर घर से जुड़ी हुई है। समर्पित डाक कर्मियों को हमारा सलाम है। और इस सलाम के साथ आपकी दोस्त सविता फिलहाल आपसे इजाज़त चाहती है। फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, मुलाकात हमारी होने वाली है आपसे 12 तारीख को, लेकिन उस दिन हमारी मुलाकात होगी शाम को 3 का तड़का में मिलेंगे, छाया लोक में मिलेंगे, चायन क्लासिक्स में मिलेंगे। और फिलहाल तो बैक टू बैक हम मिलने वाले हैं 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। और आज आज आज आज आज जी हाँ, जाना कहीं नहीं है आपको, क्योंकि आज आज जो महफिल सजेगी वो हमारे पार्श्व गायक, अमर पार्श्व गायक के आवाज़ में सजे, गीतों से सजेगी। तो बिल्कुल आपको हमारे साथ जुड़ना है। और आपकी दोस्त सविता को फिलहाल यहाँ पर कहना है टाटा बाय बाय। मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट के फिर ना सकूं। तो दोस्तों, मैं 12 तारीख को लौट कर आने वाली हूँ, और फिलहाल 11:10 पर 101.1 FM गोल्ड यानी खरा सोना पर आपसे मिलने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और अंतिम गीत अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में सुनवाते सुनवाते आपसे तो बस यही कहूँगी कि बहुत दिनों से यदि किसी को आपने, जिनको आप सबसे प्रिय अपना मानते हैं और जिसको चाहते हैं, यदि पत्र नहीं लिखा तो लिख डालिए। दो शब्द ही सही, लेकिन बहुत दिनों के बाद पत्र लिखना भी जरूरी है।

0: अरे बस, ये जो देखिए इलेक्ट्रिक के आलो,
1: ऊपर गांव में भी बिजली चलबे, सड़क बनने की देर है बस।
0: हाँ, ए तुम्हारे रही सड़क कबे हबे बोलो तो, ओ चढ़ाई भांगते भांगते गाय तो बेहाल अवस्था।
1: बनेगा बनेगा, ए कुछ साल दो साल में बन जाएगा, आस्ते आस्ते हो बे डॉक्टर बाबू, ज्यादा जल्दीबाजी में अच्छा काम नहीं मिलेगा।
0: तुम्हें तो भारी सुंदर कथा बोलो, तुम्हार संगे गल्प करते बेस लगजे, चढ़ाई भांगते हो और अत कष्ट होच्छे ना।
1: मैं क्या जाने, अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन मेरा हंसू, हाँ हंसू, दस क्लास पास है बाबूजी।
0: हंसू? हंसू के?
1: मेरा भनजा हंसू, ग्राम सेवक भी है।
0: हाँ, तो तुम्हारे नीचे छेले मेरा लेखा पड़ा शेके नहीं?
1: शादी ही नहीं किया, बाल बच्चा कहाँ से आएगा। हंसू और एक विधवा बहन सिवा इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है बाबूजी।
0: अरे बाब, अरे अरे थामो थामो थामो, देखो वो ओई नीचे ओटा की जाच्छे।
1: किधर?
0: ओई ओई जो।
1: ओ समझा, ओ कुछ नहीं, ओ कुछ नहीं बाबूजी, एक गांव वाले आदमी अपना परिवार और सामान उमान लेकर नीचे की ओर जा रहा है।
0: जादू दिए सबटा ओरकम घिरे रेखेछे केन?
1: दुनिया में कोई नया जीव, नया मेहमान आ रहा है बाबूजी।
0: नया मेहमान?
1: हाँ, बच्चे का जन्म हो रहा है।
0: से की এভাবে পথে যেতে যেতে প্রসব হচ্ছে, ডাক্তার নার্স ওষুধ বিশুদ্ধ কিচ্ছু নেই।
1: ঘাবড়ানে কো কোই বাত হি নেহি ডাক্তার বাবু, ইধার এসা হি চলতা হ্যায়, উপর বালা হ্যায় না ওহি সব কুছ।
0: এবার একটা কিছু আঁচ করতে পারছি, এখানে ডাক্তাররা থাকতে চায় না কেন? সবই যদি ভগবানের নামে চলে তো ও ডাক্তার এসে কি করবে
1: বাবুজি? আ গয়ে মেহলো গাঁও, আব বতাইয়ে किसके घर में डेरा लागवे?
0: कारुर घरे टोरे नय बाबा, तुम्ही आमाके सीधे हेल्थ सेंटर निये चलो।
1: दवाखाना में तो ले ही चलूंगा। हाँ। लेकिन जो भी डॉक्टर अफसर इधर आता है, पहले सीधे प्रेमू साहब के घर ही डेरा लगाता है। बड़े खाते पीते आदमी है साजी।
0: वो आमार खाना पीना किछु दरकार नेई, तुम्ही आमाके एकेबारे हासपाताल निये चलो, ওখানে নিশ্চয়ই আমার থাকার কিছু না কিছু বন্দোবস্ত হয়েছে।
1: দাওয়াখানা মে তো সিফ একই কমরা হ্যাঁ, হরিহর কম্পাউন্ডার দবাই দেতা হ্যাঁ।
0: ও ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি আমাকে ওই হরিহরের ঘরে নিয়ে চলো।
1: লেকিন রাত বহুত হো চুকি হ্যায়, কুছ রোটি পানি কা ইন্তজাম ভি করনা।
0: ও তুমি ওসবের জন্য ব্যস্ত হও না, আমার সঙ্গে রাতের খাবার আছে।
1: ঠিক হ্যায়,
0: হ্যাঁ
1: তব চলিয়ে। लीजिए, आ गए दवाखाना। हाँ। सामान उतार दूं बाबूजी?
0: हाँ हाँ हाँ, नाम ही दाओ, दाड़ो दाड़ो, मैं अभी टॉर्च तो जाली। सामने ओटार मध्य स्टोव और कटा बासनपत्र आछे, सूटकेस और बिछनाटा वही बारान्दाते ही राखो।
1: अब जरा बाहर बैठिए, मैं हरिहर कंपाउंडर को बुला लाता हूँ।
0: बाप रे, নভেম্বরের মাসেই যদি এই ঠান্ডা হয়, গোটা শীতটা তো সামনে পড়েই আছে। পুলওভার মাফলার ওভারকোট পরেও তো মনে হচ্ছে জমে যাচ্ছে। না, এই ঠান্ডায় মাকে আনা যাবে না, সেই এপ্রিল মেতে হয়তো আসতে পারবে। মা, মা গো, তুমি নিশ্চয়ই এখন বসে বসে আমার কথা ভাবছো। মা, চিন্তার কিচ্ছু নেই মা, দেখো দিব্যি কেমন পৌঁছে গিয়ে বল তবিয়তে বসে আছি, যা চড়াই ভেঙেছি শুয়ে পড়ারই তো কথা ছিল মা, তাই না?

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থি অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूं लेकर आप सभी का लेटेस्ट बॉलीवुड तड़कों से भरा कार्यक्रम तीन का तड़का। तो चलिए गर्मा गर्म खबरों का मतलब बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे ये जबरदस्त गाना भी।

तो चलिए दोस्तों बीटा उनका पूरा हाल जान लेते हैं। पहला हमारा तड़का। दृश्यम 3, जी हाँ, दृश्यम 3 की बॉक्स ऑफिस पर सुनामी। जी हाँ, अजय देवगन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर कहानी में सस्पेंस और थ्रिल दमदार हो तो पब्लिक सिनेमाघरों का रुख जरूर करती है। दृश्यम 3 बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है और अपने पहले ही हफ्ते में कमाई के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त भी कर चुकी है। 2 और 3 अक्टूबर का वो राज आज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और थिएटर में हर शो हाउसफुल भी जा रहा है। फिलहाल आगे का हाल कैसा रहेगा उस बारे में आने वाले हफ्तों में हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए चलिए सुन लेते हैं एक और जबरदस्त गाना बादशाह सुनिधि चौहान की आवाज में।

तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब अगले तड़के की ओर। जी हाँ, रामायण की जो रिलीज डेट में एक बड़ा बदलाव आ चुका है, और अगर आप रणबीर कपूर या शौसाई पल्लवी के महाकाव्य फिल्म रामायण का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। पहले खबरें आ रही थी कि फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इसे और भी भव्य तरीके से 5 नवंबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक रिलीज तय प्लानिंग किए हुए हैं। दिवाली के ठीक बाद का यह सरप्राइज फैंस के लिए किसी धमाकेदार तोहफे से कम नहीं होने वाला है। तो फिलहाल रामायण का इंतजार करते हैं और सुन लेते हैं हमारा अगला गाना रजीत सिंह और पलक मुचल की आवाज़ में।

0: उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त पापिया। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कोई परेशानी सामने ना आ जाए। ऐसे में जरूरी है कि हम स्वास्थ्य को केवल बीमारी के इलाज तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बनाएं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पहल का उद्देश्य लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराती है। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी जांच और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराने पर जोर भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सरकारी योजनाओं के साथ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच हमें कई परेशानियों से बचने में मदद भी कर सकती है। किसी भी बीमारी के लक्षणों को लंबे समय तक अनदेखा न करें और जरूरत पड़ने पर योग्य चिकित्सा की सलाह जरूर लें। यही जरूरी है कि हम अपने परिवार के बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दें। पात्रता और उपलब्धता सेवाओं की जानकारी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आधिकारिक सरकारी माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। याद रखिए, स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज के नींव होते हैं, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत अभी की परियोजना प्रस्तुति से।
0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का। 107 FM रेनबो पर।
1: तो दोस्तों, तीन का तड़का में इस छोटी सी परियोजना प्रस्तुति के ब्रेक के बाद वापस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमल हसन के बारे में चलिए अब लेटेस्ट न्यूज जान लेते हैं। कमल हसन फिल ला रहे हैं सेनापति का खौफ, यानी इंडियन 3 कंफर्म हो चुकी है। कमल हसन के फैंस के लिए तो आज जश्न का दिन है। जी हां, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इंडियन 3 का ऐलान कर दिया है। 70 के पार पहुंच चुके कमल हसन जिस एनर्जी और जज्बे के साथ सेनापति का आइकॉनिक करदार में लौट रहे हैं, उसने सोशल मीडिया पर पहले से ही तहलका मचा दिया है। तो चलिए बात करते हैं अब अब्बास मस्तान की। जी हाँ, अब्बास मस्तान की वापसी होने जा रही है 3 Monkeys से। बॉलीवुड में जब ट्विस्ट और टर्न्स की बात आती है तो डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान का नाम सबसे पहले सामने आता है। सफेद कपड़ों में आने वाले डायरेक्टर्स एक बार फिर से एक नया मास्टरपीस लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है 3 Monkeys। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल बेहद ही इंटेंस रोल में दिखेंगे। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में पसंद है तो अपनी वॉच लिस्ट में इसे अभी से जोड़ लीजिए। फिलहाल आगे क्या होने वाला है, आगे की खबरों के बारे में हम जानते रहेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना भी। जी हाँ, जो है परम सुंदरी फिल्म मीमी से।

दोस्तों, डायरेक्टर एस एस राजमौली जब भी कुछ बनाते हैं इतिहास ही रचता है। बाहुबली में किलकली भाषा के बाद अब वो अपनी अगली बड़ी फिल्म वाराणसी, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं, उसके लिए एक पूरी तरह की एक नई और अनोखी फिक्शनल लैंग्वेज यानी काल्पनिक भाषा तैयार करवा रहे हैं, ताकि सिनेमा हॉल में बैठने वाले दर्शकों को एक अलग ही दुनिया का एहसास हो सके। वहीं एक्शन किंग विद्युत जामवाल की स्ट्रीट फाइटर लुक और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं कि अपने एक्शन हीरो विद्युत जामवाल की, जो अपने नए प्रोजेक्ट स्ट्रीट फाइटर के बारे में बात करते हुए विद्युत ने कहा कि इसमें उन्हें बिना किसी डुप्लीकेट या VFX के अपनी असली और रॉ एक्शन स्टाइल दिखाने का मौका मिला है। मार्शल आर्ट्स लवर्स के लिए फिल्म एक विजुअल ट्रीट होने वाली है। तो फिलहाल आज की जो लेटेस्ट बॉलीवुड बुलेटिन है दिन का तड़का में, हम यहीं पे फिलहाल अंत करते हैं, क्योंकि 3:30 बजे से सुनेंगे आप NCRT का स्पेशल प्रोग्राम उमंग। लेकिन एंटरटेनमेंट का हमारा ये जो सफर है वो जारी रहेगा। 5:15 पर FM गोल पर मिलेंगे हम वापस चाय एंड क्लासिक्स के साथ। बातें होंगी डाकिये के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में, उसके बाद फिर 7 बजे से छाया लोक तो रहेगा ही, जहां होगी बिहाइंड द सीन्स यानी कि सेलुलर सुपरहिट्स की बातें। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं वापस FM गोल पर 5:15 पर, उसके बाद फिर 7 बजे से छाया लोक में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, यूं ही 107 FM रेनबो है ये। थोड़ी देर में सुनेंगे NCRT का स्पेशल प्रोग्राम, और अभी फिलहाल जाते जाते आप सभी के लिए मधुमंती बागची और जावेद अली की आवाज़ में आशिकों की कॉलोनी फ्रॉम ओ रोमियोज़।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
3: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से

0: बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
0: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
0: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
0: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर, हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं
0: जी। तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था
0: जी।
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोता, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है
0: जी।
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है
0: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
1: जी हाँ बिल्कुल, तो आइए श्रोताओं, हम भी अपनी मातृभाषा

0: भाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।
1: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
1: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया।

0: जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सूबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी।

0: रहेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
1: सत श्री अकाल।
2: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
3: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
4: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 100.107 FM रेनबो पर लेकर
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
0: जी हाँ, शुक्रवार का दिन है, यानी कि समय है आज
2: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स,
0: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स का। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स। सिनेमा के इस रंगीन दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी शाम अच्छी गुजर रही होगी, और अगर दिन भर की भाग दौड़ ने आपको थोड़ा थका दिया तो आज की ये फिल्मी जो महफिल है आपके चेहरे पर मुस्कान लाने पर मजबूर जरूर होगी। दोस्तों, जरा सोचिए, आपको किसी बात पर हंसी आती है, आप खुलकर हंसते हैं, आपके आसपास बैठे लोग भी हंसने लगते हैं, और कुछ ही देर में माहौल खुशनुमा हो जाता है। हंसना कितना आसान लगता है ना, लेकिन जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसका काम ही लोगों को हंसाना है। उसे पता होना चाहिए कि किस बात पर ठहरना है, किस बात पर जोर देना है, कहाँ चेहरे का भाव बदलना है और कहाँ बिल्कुल गंभीर बने रहना है। क्योंकि कई बार सबसे मजेदार बात वही होती है जिसे कहने वाला खुद बिल्कुल गंभीर देख रहा हो। हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कभी गलतफहमी से हंसी पैदा हुई, कभी किसी किरदार की अजीबोगरीब आदतों ने दर्शकों को गुदगुदाया, तो कभी एक छोटी सी बात ने इतनी बड़ी उलझन खड़ी कर दी कि कहानी खत्म होने तक हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। और कमाल की बात यह है कि ऐसी फिल्में हम एक बार देखकर भूल नहीं जाते, कई बार तो उनके संवाद हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो आज सेल्यूलर सुपर हिट्स में हम बात करेंगे हंसी के पीछे छिपी मेहनत के बारे में, उन कलाकारों की जिन्होंने अपनी टाइमिंग, अपने अंदाज और अपनी बेहतरीन केमिस्ट्री से कॉमेडी को यादगार बनाया। हमारी इस फिल्मी यात्रा में दो खास पड़ाव तो होंगे ही, एक है 1968 की फिल्म पड़ोसन और दूसरी है 1979 की फिल्म गोलमाल। दो अलग दौर, दो अलग तरह की कहानियां, लेकिन दोनों में एक बात बिल्कुल समान है, दर्शकों को हंसाने का ऐसा हुनर जो दशकों बाद भी पुराना नहीं पड़ा। क्यों है ना? तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि भाई, आपके जो फेवरेट कॉमेडियन, कॉमेडी फिल्में तो हम सभी देखते हैं, तो आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है, मैं ये जानना चाहूंगी आज आप सभी से।

0: इस गाने के बाद दोस्तों चलिए पहला कॉलर, पहले जो कॉलर है हमारे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनके फेवरेट कॉमेडियन कौन है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: गुड इवनिंग जी।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिलेबस सुपर हिट्स में।
1: मैं मुनीरुद्दीन बोल रहा हूँ, दक्षिण सांगरेल हावड़ा से।
0: जी मुनीरुद्दीन, कैसे हैं, सब हाल चाल ठीक?
1: बहुत अच्छा है यार, आपका टॉपिक हमारे जीवन में खुशी लाया क्योंकि हमारा जीवन खूब दौड़ भाग जीवन में खुशियाँ खूब कम हो जाते हैं, कुछ फिल्म हमारे जीवन में खुशियाँ देते है, खास करके कुछ कॉमेडियन जैसे कि जॉनी लीवर है, महमूद है, शक्ति कपूर है, और बहुत सारे कॉमेडियन हैं, लेकिन मेरा फेवरेट कॉमेडियन महमूद है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो जो पुराना कॉमेडियन है और उसका जो एक्टिंग का स्टाइल और ना बोलने का स्टाइल वो बहुत अच्छा लगता है और हमारा जीवन के खुशियां लाता है।
0: एकदम सही बात है। तो बताइए कौन सा गाना फिर सुनना पसंद करेंगे आप?
1: ओ महमूद के वही हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत, एक क्लिप सुना दीजिए।
0: गुणगान फिल्म से है ये गाना।
1: सभी श्रोताओं को एडवांस मुहालय का शुभकामना देता हूँ।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही थू मैं?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं

ताली तग धुमी तग ताली तग जमी तग धाल आमक तग धुग तग ताली गे नक तग नक तग झुमी तग नक नक झुमी तग नक नक झुमी तग नक नक झम तारी ता जग तारी ता झन जाने को तारी दाम तारी गेटे ताली झुम तारी ता जग तारी ता झन जाने को तारी दाम तारी गेटे झम तारी जग तारी तग नक तक तक झम तारी जग तारी जाने जाने को तक।

0: दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, सेलुलर सुपर हिट्स में आगे बढ़ने से पहले आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे विशिष्ट कलाकार को भी याद करना चाहूंगी जिनके अभिनय का अंदाज हमेशा सबसे अलग रहा है, नाना पाटेकर। उनके निधन की खबर ने सिनेमा के चाहने वाले को भावुक किया। नाना जी ऐसे कलाकार थे जिन्हें किसी एक दायरे में बांधना आसान नहीं था। क्रांतिवीर जैसी फिल्म में उनका प्रभावशाली और गंभीर अभिनय हो या वेलकम में उदय शेट्टी का उनका अनोखा कॉमिक अंदाज, उन्होंने अपने अदाकारी से अलग अलग तरह के किरदारों को याद बनाया। उनके संवाद बोलने का तरीका, चेहरे के भाव और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी की अपनी अलग पहचान थी। आज उन्हें याद करते हुए हम यही कहेंगे कि एक अच्छे कलाकार की पहचान यही है कि वह अपने किरदारों के जरिए दर्शकों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। नाना पाटेकर की यादों को सादर नमन करते हुए अब लौटते हैं सिनेमा की तरफ, जहां हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अभिनय की एक बारी कला भी है। तो चलिए उससे पहले बात कर लेंगे हमारे अगले कॉलर से, जो इंतजार कर रहे हैं काफी देर से हमारा। हेलो
2: जी, नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग पापिया जी।
1: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेलुलर सुपर हिट्स में।
2: जी शुक्रिया पापिया जी। मैं मोहम्मद नासिर गरियाघाटा से।
1: जी नासिर जी, कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसा है? हाल चाल कैसा है आपका?
2: बहुत अच्छा हूँ पापिया जी, बहुत अच्छा हूँ। और घर परिवार में भी सारे लोग अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी होंगी।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: और आज का जो टॉपिक आप करके सेलुलर सितारे में आपने लाया है, बहुत ही अच्छा है। और अभी के भाग दौड़ की जिंदगी में जो इंसान इतनी भाग दौड़ में रहते हैं, इतने टेंशनाइज में रहते हैं और इतनी जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों के बीच में ये कॉमेडियन जो भी हमारे फिल्मी अदाकारे हैं, उनका बहुत अहम रोल होता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि इनके द्वारा जो हटाए जाते हैं, कॉमेडी जो सीरियल करते हैं या फिर जो भी करते हैं, वो हमारे समझिए कि आधी थकावट को, आधा टेंशन को वो दूर कर देते हैं। तो ये एक बहुत अहम रोल होता है उनका, कॉमेडियन का। तो हमारे सबसे फेवरेट जो कॉमेडियन थे हमारे ज़माने के हिसाब से, अगर मैं नाम लूँ तो हमारे महमूद साहब, वो उनका मैंने बहुत सारा फिल्म देखा है। तो वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे और कुछ सीरियस फिल्म भी उन्होंने किया है। उसके अलावा जॉनी वॉकर है, टेस्टो मुखर्जी भी थे उससे पहले, वो भी हटाया था। लेकिन मैं इन तमाम लोगों से हट करके मैं एक आदमी का नाम लेना चाहूँगा जो अब हमारे भी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, और कल उनका जो है सो इस पानी दुनिया से निधन हो गया, नाना पाटेकर साहब।
1: जी, अभी जस्ट उन्हीं के बारे में बातें हो रही
2: हैं। सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी तरफ से। और उनके जो पॉजिटिव एनर्जिकल रोल फिल्म में रहा करते थे, वो हमारे जिंदगी में रियल लाइफ में समझिए कि बहुत बड़ा एक रोल था उनका। जो भी वो उनका वाक्य था, जो भी उनके शब्द थे फिल्म में, वो हमारे रियल जीवन से, हमारे रियल जिंदगी से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे उनके वाक्य। तो सीरियस फिल्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी कॉमेडी की बात हो रही तो मैं कॉमेडी पे ही कहना चाहूँगा कि मैंने एक फिल्म देखी थी उनकी, वेलकम। और उदय शेट्टी और उसमें क्या कहते हैं कि उनके साथ जो है वो भी थे, दो हीरो थे। तो उदय शेट्टी बन करके आए थे, तो उनका एक डायलॉग था, बहुत अच्छा डायलॉग था, जिसमें डॉक्टर घुंगरू जी बन करके आते प्रेस रावल, तो उनके लिए उन्होंने कहा था कि ये क्या करते हो, जिसको भी चाहते हो गोली दिखा देते हो, बंदूक दिखा देते हो। घुंगरू जी तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं घुंगरू जी मत बोलिए मुझे, तो नाना पाटेकर साहब का एक वाक्य है, नहीं ऐसा कहते अभी तो हम पार्ले जी को भी जी कहते हैं, आप तो डॉक्टर हैं सेवा करते हैं आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं सेवा करते हैं सारे लोगों का। तो ये वाक्य मुझे बहुत हंसाया था, बहुत अच्छा लगा था उनका। और वाकई में वेलकम में जो है ना काफी बहुत अच्छी कॉमेडी उन्होंने किया, और ये दर्शा दिया कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ सीरियस ही नहीं बल्कि एक हंसाने वाला भी कलाकार का वो रोल वो अदा कर सकते थे, और उन्होंने सारी दुनिया को, सारे दर्शक को हंसाया, बहुत अच्छा लगा उनको। मैं फिर से अपनी तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो हम लोगों के बीच में तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके अदाकारी हम लोगों के जीवन में हमेशा रहेंगे, हम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। जी, और मैं ये गाना अब डेडिकेट करूंगा तमाम लोगों को, खास करके उन्हीं के फिल्म से, उनको याद करते हुए उनके फिल्म से ही, वेलकम का क्या किया क्या किया होता।
1: चलिए ओके, फिर सुनते हैं ये गाना हम सब मिलकर। ओके ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, वापस मुलाकात होगी आपसे, अच्छे से रहिएगा।
2: शुक्रिया
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल नाना

तो फिलहाल चलिए बात करते हैं 1960 में रिलीज हुई फिल्म पड़ोसन को, जिसका निर्देशन ज्योति स्वरूप ने किया था। फिल्म में सुनील दत्त, सायरा बानो, किशोर कुमार, महमूद और ओम प्रकाश ऐसे कलाकार थे। इसकी कहानी में प्रेम है, संगीत है, शरारत है और सबसे बढ़कर एक है ऐसी हास्यपूर्ण परिस्थिति जिसमें हर किरदार अपनी जगह मजेदार है। लेकिन इस फिल्म की खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं, असली कमाल था कलाकारों का आपसी तालमेल और ये समझ कि किस समय कौन सा किरदार कितना आगे आएगा और किस समय दूसरे को जगह मिलेगी। फिल्म में भोला का किरदार निभाने वाले सुनील दत्त को

0: मत कीजिए, बोला एक सीधा साधा युवक जिसे बिंदु से प्यार हो जाता है लेकिन प्यार का इजहार करना उसके लिए आसान नहीं। सामने है बिंदु जिसे संगीत का शौक है, उसके संगीत शिक्षक मास्टर पिल्ले उनके किरदार जिसका किरदार महमूद ने निभाया था। अब भोला को अपनी प्रेम कहानी आगे बढ़ानी है तो उसे भी संगीत का सहारा लेना पड़ता, लेकिन समस्या ये है भाई कि भोले को संगीत का उतना ज्ञान ही नहीं जितना उसके प्रेम में पड़ने के लिए जरूरी दिखाई देता है। यही कहानी में प्रवेश होता है किशोर कुमार के किरदार का, यानी कि विद्यापति का। विद्यापति संगीत के जानकार है और भोला की मदद करने के लिए अपनी आवाज का हुनर का इस्तेमाल भी करते हैं। इस तरह एक तरफ भोला का हाव भाव, दूसरी तरफ विद्यापति की आवाज और संगीत का खेल, और तीसरी तरफ मास्टर पिल्ले की अपनी अकड़ और संगीत पर पकड़, इन तीनों के बीच जो हास्य पैदा हुआ वही पड़ोसन की जान बन जाता है। तो ऐसा ही है कुछ गोलमाल के साथ भी, बड़ा ही कंफ्यूजन लेकिन जबरदस्त कॉमेडी और ऐसी फिल्म जिसे हम आज भी याद करते हैं। तो फिलहाल उस फिल्म के बारे में भी बातें करेंगे, पर उसका टाइटल ट्रैक फिलहाल पहले सुन लेते हैं आर डी बर्मन की आवाज में। और ये गाना डेडिकेट करते हैं मैं अनंत दा को, मैं डेडिकेट करना चाहूँगी जिन्होंने फ़ोन किया था हमें जयनगर थाना से। तो अनंता, ये गाना आपके और आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है,

0: तो बातें होंगी गोलमाल फिल्म के बारे में जो आई थी 1979 में. उससे पहले चलिए एक कॉल ले ही लेते हैं. हेलो.
1: हेलो.
0: हाँ जी नमस्कार.
1: गुड इवनिंग बाबा जी.
0: गुड इवनिंग. हेलो. जी अनुप जी कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: अच्छे हो आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. जी जी जी जी तो बताइए फिर कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं और कौन सा गाना आप फिलहाल सुनना चाहते हैं? ओके चलिए सुनते हैं हम सब मिलकर ये गाना. ओके ओके चलिए ठीक है. थैंक यू, वापस मुलाकात होगी आपसे. तो फिलहाल गोलमाल फिल्म की बात करने से पहले सुन लेते हैं फरीब फिल्म से रिक्वेस्ट किया हुआ हमारा गाना कुमार शानू और अलका यानी की आवाज में.

0: तो चलिए दोस्तों हमारे अगले कॉलर को फटाफट ऑनर ले लिया जाए। हेलो
1: हेलो पापा जी नमस्कार।
0: नमस्कार पापा, स्वागत है आपके सिलेबस सुपर हिट्स में।
1: आपका भी प्रोग्राम पे स्वागत है।
0: धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे अच्छे गीत बजा रही हैं आप, आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ मैं
0: आपको। आप लोगों को भी धन्यवाद क्योंकि अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं हमारे पास
1: और बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: और दुख भी है हमें कि हमने एक ऐसे कलाकार को अभी खो दिया। नानी पाटेकर जी की बात कर रहा हूँ
0: जी।
1: बहुत दुखी हुआ हूँ मैं। बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला
0: जी।
1: वो जो अदाकारी उनकी थी वो बिल्कुल जो है नेचुरल एक कैरेक्टर जो था उनका वो कैरेक्टर में आते थे
0: बिल्कुल,
1: ऐसा देखने से प्रतीत होता है
0: जी।
1: और अब क्या कहूँ मैं मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन एक गीत मुझे है बस गीत बजा दीजिए।
0: अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
1: हाँ आनवी सजना का गीत है वो बजा दीजिए बस।
0: चलिए ठीक है, कौन सा गाना?
1: कौन सा गाना? रंग रंग के फूल खिले हैं।
0: चलिए ठीक है सुनाते हैं आपको, अभी ठीक कर लीजिए फिर आप जी। थैंक यू, वापस मिलेंगे। थैंक यू।

तो दोस्तों बातें हो रही थी फिल्म गोलमाल। जी हाँ, गोलमाल में अमोल पारेकर बने थे राम प्रसाद शर्मा, एक सीधा साधा युवक जो नौकरी की तलाश में, नौकरी पाने के लिए उसे पहुंचना पड़ता था भवानी शंकर के सामने, जिनका किरदार निभाया था उत्पल दत्त ने। भवानी शंकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें परंपराएं बहुत प्रिय थी, उन्हें सादगी पसंद है, अनुशासन पसंद है और खास तौर पर ऐसे युवक पसंद है जो उनके अपनी सोच के मुताबिक हो। उनके लिए मूछें भी केवल चेहरे पर उगे बाल नहीं बल्कि व्यक्तित्व और संस्कारों का प्रमाण पत्र है। अब राम प्रसाद को नौकरी चाहिए, वो जानता है कि अपनी असली रुचि और आदतों के साथ वो भवानी शंकर को प्रभावित नहीं कर पाएगा, लिहाजा

0: फिलहाल जाते जाते ले लेते हमारे अगले और लास्ट कॉलर को और चलिए देख लेते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: या नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: जी शुभजीत, कैसे हो? काम वाम कैसे चल रहा है? घर परिवार में सब ठीक है?
1: जी ठीक है। और आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ है। थैंक यू।
1: और आज तो हंसी मजाक का वातावरण है
0: जी,
1: तो मुझे लगा थोड़ा हटके थोड़ा बात कर लूँ।
0: कोई बात नहीं, जाते जाते थोड़ा हटके कुछ होना ही चाहिए, है ना?
1: जी, थोड़ा एक्सेप्शन दे लूँ कि नाना पाटेकर जी हमारे साथ और नहीं रहे, तो उनका एक फिल्म था, दो फिल्म का जिक्र करूंगा। एक तो क्रांतिवीर, जिनमें उनको रेबेलियन की तौर पे देखने को मिले, और खामोशी जो एक फिजिकली चैलेंज के हिसाब से एक जो सुन नहीं पाते, तो मुझे लगा कि वो फिल्म का नाम मैं अभी भूल जा रहा हूँ, जया भादुरी या संजीव कुमार का जो था।
0: ओके। हाँ जी।
1: हाँ, तो वो चीज मुझे खामोशी में दिखाई दिया, जब सीमा विश्वास और नाना पाटेकर का जो कम्युनिकेशन था बिना बोल के, तो वो मुझे अच्छा लगा था। तो मुझे वहाँ उस फिल्म से गाना बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है, ये है बाहों के दरमियान।
0: चलिए सुनते हैं फिर जाते जाते ये गाना। ओके शुभजीत, फिर वापस मुलाकात होगी, वापस बातें होंगी, पर अभी फिलहाल समय हो गया है मेरे जाने का भी। ठीक है, तो टेक केयर, गुड नाइट, और सुनाते हैं जाते जाते आपका फेवरेट गाना। ओके,
1: शुक्रिया,
0: थैंक यू। तो थे शुभजीत हमारे साथ, सुनना चाहते हैं बाहों के दरमियां। और दोस्तों, पहला जो घंटा है छायालोक का यही समाप्त होता है। आपके साथ 8 बजे से रहेंगी देविका। जी हाँ, तो बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए और गाने सुनिए। और फिलहाल हरिहरन और अलका यानी की आवाज़ में बाहों के दरमियां आप सभी के लिए 107 FM रेनबो है ये। मैं पापिया मिलती हूँ किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

खूबसूरत रोमांटिक गीत के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम छाया लोक में 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट देविका और दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ क्योंकि अब बेहतरीन तराने जो हैं आप सुनेंगे एक के बाद एक क्योंकि शुरू हो चुका है छाया लोक का दूसरा घंटा जिसमें मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त होस्ट देविका।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे हम तुम फिल्म से टाइटल ट्रैक, और ये बेहतरीन तराना था बाबुल सुप्रियो के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यार। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि स्टूडियो की घड़ी इशारा करिए कि बेहतरीन तराने जो हैं वो आपको सुनाते जाएँ हम एक के बाद एक। फिलहाल आप सभी के लिए कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

की डोली में आई झील मिलाती जुगनों की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आगे कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी टफली पर था ओ

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे जसविंदर नरूला के साथ श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम देवदास। और इस गीत को सुनते सुनते हम चले आए हैं इस कार्यक्रम में 8:32 के पड़ाव पर। फिलहाल आप सभी के लिए ये गीत MG श्रीकुमार की आवाज में, साथ ही आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

वेल फ्रेंड्स, ऑन स्क्रीन रानी मुखर्जी के साथ नजर आए थे सैफ अली खान, शान की आवाज सुनिधि के साथ, फिल्म का नाम तारा रंपम, और ये बेहतरीन तराना सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय 8:41 आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स पर कार्यक्रम छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है आपसे विदा लेने का, 8:55 और अगला गीत पटाखा गुड़ी सुनते सुनते दीजिए दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत। गुड नाइट, शब्बा खैर।

मृगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण घूषुणी परिघायुधा सौम्य सौम्य तराशेष सौम्य बृहस्पति सुंदरी।

शौशाम शरीके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्राही धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महा

यैतत् कापि स्तुति सद्य परापरोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं सूता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य दिति संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी

एकाधार सीति विश्वम विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरि भीतिर्नित्यं यथा असुरवधाद दुनैव जित्य पापानि सर्व जगदाज्य शमनयाशु उत्पात पाक जनितांश महोपसर्गान् प्रणतालं प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणी रैयक्यवासिना विद्ये लोकान्।